कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, इको परमात्मा ही है जो साडे दिल दी असली गल जो अंदर चल रही होंदी है, जो उधेड़ बुन या जो भी तूफान साडे मन दे विच चल रहे होंदे ने उस सारा कुछ जानता है। ते चंगा चाहे माड़ा इंसान जिद्दां दा मर्जी होवे लेकिन उसकी पीड़ चंगी तरह जानता है वो परमात्मा। वो साडे सारे दुख पछाणदा है केड़े असली ने ते केड़े असी ओदे मन नूं लाए हुए ने।

0: जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और फिलहाल टाइम हो गया है एक छोटे जे ब्रेक दा, क्योंकि ब्रेक जिंदगी दे विच कई बारी जरूरी हो जाती है, साडे लई भी ते मशीन दे लई भी, है ना। ते मशीन नूं भी आपां नाल दी नाल ब्रेक दवा देनी है ताकि मशीन साडे नाल गुस्से ना हो जाए, और गुस्से हो के ते फिर काम चलदा नहीं है ना किसे दा। आपां गुस्से होण नहीं देना। एक छोटे जे ब्रेक तो बाद गल्लां बातां दा सिलसिला जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच।
1: सुनो, की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इस नाल तुहाडा घर सूर्य घर बन जांदा है, यानी तुहाडा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वाधू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो? हुणे रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in ते।
3: हर घर सूर्य घर।
4: फिर तो यार इनू तो ब्लॉक ही कर देना।
5: सर, दुबई दी फ्री ट्रिप।
4: इनू भी ब्लॉक। किन्ने आनू ब्लॉक करी जावा यार।
6: सिर्फ फोन ते ब्लॉक करना स्पैम खत्म नहीं हुंदा, हर बार नवा नंबर आ जांदा है।
4: तां फिर की करा?
6: कॉल पिक कर, फिर ट्राई डीएनडी ऐप ते रिपोर्ट कर, कैटेगरी सिलेक्ट करो, बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस ते सबमिट करो। बस कुछ सेकंड्स दा काम है।
4: मतलब सब दा स्पैम कट जावेगा?
6: हां, रिपोर्ट मिलदे ही एक्शन हुंदा है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करो। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर तों, ते रिपोर्ट करना शुरू करो।

पता की अलर्ट है, तिखी गर्मी रहेगी और बहुत ज्यादा गर्म हवावां चलन गया, कोई खुश होने वाला है नहीं सी। मैनू हिसाब किताब नजर आया। मैं वैसे एक चीज नोट की है, तुसी की है कि नहीं की? मैं दस दी हाँ, पहला 5:30 बजे ठीक ठाक सूरज देवता जी सुते होंगे सी आराम दे नाल, जो मैं आया करती सी। अज कल इदां लगता है कि जिवें मतलब इत्थे आके बह गए ने धरती दे बिल्कुल सामने उत्ते आके। जो मैं घरों निकलती हाँ उदों ही बहुत वड्डा लाल सूरज मैनू चमकदा होया नज़र आउंदा और बस दफ्तर आउंदे आउंदे तक पूरा प्रकाश फैलाया हुंदा इन्हां ने। मैनू नहीं पता कि इन्ने गुस्से च क्यों ने। करांगे वैसे इस गल इस बारे भी आपां गल। कहिंदे ने नौ तपा किहा जांदा इसनू, नौ दिन बहुत तपदी होई जिहड़ी गर्मी है वह पैण वाली है। ते वैसे एक पासे ये भी कहा जा रहा है कि अगर दो दिन ज़्यादा गर्मी रहेगी तो 28 नूं आंधी और बारिश ते गड़े भी पै सकते हैं। बस मैनू 28 तरीक का इंतजार है क्योंकि अज

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स. और देखो जी तुहाड़े लई हुण वापस आ गए हैं फिर तो, और टाइम ये कह रहा है कि हुण टाइम हो गया है तुहाडे एंटरटेनमेंट दे नाल नाल थोड़ी जी एक्सरसाइज करवाउण दा, क्योंकि सैगमेंट शुरू करन जा रही हैं जी अड्डी टप्पा, जिस विच मेरी कोशिश यही होएगी कि इदां दे गाने तुहानू सुनावा कि तुसीं नच्चण तो अपने आप नूं रोक ना पाओ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਆਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਆਰਜੇ ਪੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਟ ਸੌਂਗਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰੂੰਗੀ. ਔਰ ਹੇਅਰ ਕਮਸ ਦ ਫਸਟ ਟ੍ਰੈਕ.

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 प्राप्त की जा सकती है।

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स, और बस इसी वजह करके तुहाड़े लिए नवे नवे टाइम ते अलग अलग टाइम ते अलग अलग प्रोग्रामा दे नाल तुहाड़े एंटरटेनमेंट लिए हमेशा त्यार बर त्यार रहिंदा जी FM रेनबो। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी पॉजिटिव हैप्पी एंड हेल्दी वाली ट्यूजडे मॉर्निंग तुहानू सबनू। वेलकम बैक, और ट्यून की तरह जी तुसी FM रेनबो 102.7 ते 103.6 से और नाल दी नाल यानी कि इसी फ्रीक्वेंसी दे 103.6 दे जरिए अमृतसर ही नहीं सरहद पार तो भी प्यारे प्यारे लिसनर्स सानू जोड़दे ने, तो हांडा भी खास ते प्यार भरे स्वागत कर दिया जी। और इस तो अलावा न्यूज ऑन AIR दे जरिए देशों विदेशों के कोने कोनिया दे विच जुड़दे ने साडे नाल दिल तो पंजाबी वाले लिसनर्स, क्योंकि प्रोग्राम है जी दिल अपना पंजाबी। शुरू करन जा रही हूँ, 9:03 हो चुके ने और मैसेजेस आ रहे ने। मैसेजेस मतलब अमेरिका तो भी आ गए ने मेरे जिहड़े प्यारे प्यारे लिसनर्स हैगे ने उत्थे रहिंदे, और ते नाल दी नाल बई फैमिली मैंबर्स भी ते हुंदे ने ना जो कदे मिस नहीं करदे तुहाडा प्रोग्राम। सो अमेरिका कैनेडा दे लिसनर्स ते पहुंच चुके ने, अपनी दस्तक दे चुके ने, तुहानू कादा इंतजार है। अच्छा, नंबर अनाउंस करन दा, ओके जल्दी दे नाल फोन चको। ओके, नंबर नोट करो जी, साडा FM रेनबो दा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 9855101027, यानी कि 9855101027 ते, और इस नंबर ते तुसी अपने वॉइस मैसेजेस भेज सकदे हो मैनू, यानी कि तुहाड़ी दोस्त पूजा टोहानी नू। हाँ जी, अज मेरे नाल चल रहा सी जी सफ़र, और ये सफ़र चलते चलते देखो जी अपने आखिरी पड़ाव ते है, 1 घंटे दे विचों 5 मिनट खत्म हो चुके ने, तुसी जल्दी दे नाल अपनी अटेंडेंस लगवाओ। सो करदे हां गल्लां बातां अज, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे मैसेजेस प्लीज़ ना करियो, थोड़े छोटे मैसेज

0: मिसाल दे के बड़ा अच्छा किया क्योंकि ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट
1: जी।
0: मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। रेनबो ते फोनिंग प्रोग्राम सब तो पहला पैगाम प्रोग्राम दे नाल शुरू होया सी, जिहड़ा कि एक दिन पहला रिकॉर्ड हुंदा सी ते दूसरे दिन ब्रॉडकास्ट हुंदा सी। फिर लाइव फोनिंग प्रोग्राम शुरू होया जिसका नाम नाले गल्ला नाले गीत रखा गया।
1: बिल्कुल जी।
0: फिर गजल स्पेशल प्रोग्राम शुरू होया जिस विच इस निमाने जे स्रोते नूं बेस्ट राइटर दा अवार्ड मिलिया। जो स्टूडियो विच फोन मिलना पहला ऑफलाइन गल होनी ते अपनी पसंद दसनी ते फिर ऑनलाइन आना
1: जी।
0: ते पहला शेर बोलना ते फिर गलबात शुरू करनी। मैनू वेख के फिर सारे शेर नाल एंट्री करन लग पे जो की बड़ा अच्छा लगा। ट्रकां ट्रालियां दे मगर आम पढ़न नूं मिलदा है सड़ो ना रीस करो। हुण दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम जो सानू एक बहुत वड्डा प्लेटफार्म मिलिया है जिथे असी अपने अंदर दे कलाकार नूं सारिया दे सामने लैके आउंदे हां। इस विच इस खासकर उदय चंद्र ने सवेरे 6 बजे तो लैके 9 बजे तक दे और उस दिन दे आरजे ने की जानकारियां दित्तियां ते उन्हां जानकारियां दा सानू की फायदा मिलेगा ये दसना शुरू किया। मेरे वांगू होर भी स्रोते सवेरे उठ के प्रोग्राम सुनन लग पे
1: जी।
0: ये सारा कुछ दसन भी लग पे ने।
1: बिलकुल बिलकुल
0: एहो ही ते एक दिल दी इच्छा हुंदी है कि नंबर 1 रेडियो रेनबो एफएम दे स्रोते नाल जुड़न ते लाभ लैन। 2 लाइनां कह के अपनी वाणी नूं विराम देंगा। साडे भरा जिहड़े लहिंदे पंजाब विच हैगे ने ओह भी साडे रेडियो रेनबो दे प्रोग्राम बड़े चावां नाल सुनदे ने ते इस प्रोग्राम दा हिस्सा भी बनदे ने।
1: जी
0: बागे रिये सरहदे करिये अर्ज कि तेरे अगे असी ता मनिये भाणे नूं कोई अजमेर शरीफ नूं तड़फे ते कोई तड़फे ननकाने नूं। जलंधर रेडियो रेनबो एफएम जिंदाबाद जिंदाबाद ते जिंदाबाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उदय चंद्र जी मैं बिल्कुल एग्री करदी हां जी तुहाडे नाल, तुहाडी तरह बाकी होर लिसनर भी सवेर तो लैके जिहड़ा जो भी मतलब मैं क्या हुंदा प्रोग्राम दे विच उसनूं दसन लग गए ने। और ये तुहाडी वाली गल के तुहाडी तर्ज ते या तुहाडी तरह वो फिर शो भी सुनन लग गए ने, बेस्ट चीज है जी। गल सही है एकदम, क्योंकि गल ये है कि 5:53 तो अगर शुरुआत की है तो फिर ट्यून सिर्फ रेडियो 9 बजे ही क्यों करना। असली लिसनर तो वो है ना जो सफ़र मेरे नाल शुरू करते हैं और मेरे सफ़र के अंतिम पड़ाव तक मेरे नाल बने रहते हैं, वो फिर मैं ज़्यादा प्यारे हुए ना। थैंक यू तुहाड़ा उदय चंद्र जी, तुसी बिल्कुल पहले मतलब मिनट और सैकेंड तो लैके एंड तक शो दे नाल जुड़े रहते हो, दिल तो थैंक यू अजय तुहाड़ा। और हुण टाइम हो गया है प्रोग्राम दे विच थोड़ा जिहा होर अगे वधण दा। और प्रोग्राम दे विच अगला मैसेज गुड मॉर्निंग मैडम जी दलजीत सिंह बाठ तरन तारण साहब तो कर रहे ने मैसेज। जिंदगी बहुत छोटी है, किसी नाल विरोध करके अपनी जिंदगी नूं कहिंदे नरक ना बनाओ। गल तो सही है। अगला मैसेज आया है जी पूजा टोहानी जी सत श्री अकाल। हो जावे मेला कोई सच्चा दिलदार मिले, जिवें मिलदा है रंग विच पाणिया लंघ जावे पाणी, कदे फेर नहीं दोबारा आउंदा, रहणियां है जगत कहानियां। पाणियां दी खिच रहिंदी नीवियां नूं जिवें नदी दरियावां नूं समुंदरां, करे मजबूर महका फुल्लां वाली भोरियां नूं जोगी वाला फेरा कन्नी मुंदरां, करी ना तूं माण गिल ओके करी ना तू माण गिल गुण रख पाणी वाले, कमलावे ना कोई फुल पत्तियां, मन लै तू कहना सदा बैठ भी नहीं रहना, मेला मुक्कना है बंद होना अखियां, मेला मुक्कना है बंद होना अखियां। और ये मैसेज सतनाम सिंह गिल पिंड जौड़ सिंह वाला तरन तारण साहब तो कर रहे ने मैसेज। जीव जी कहते कोई हड्डी नहीं होंदी लेकिन चंगियां नूं कट भी सकती है ते जोड़ भी सकती है कईयां नूं, इस करके इनू सावधानी दे नाल कहिंदे वरतना चाहिए। गल बिल्कुल सही है, पर यह जिहड़ा मैसेज है सानू शेयर किया बिंदू होरां ने बस्ती शेख जलंधर तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिंदू जी। सिक्ख्या ते संस्कार जिंदगी दे जिंदगी जीण दे मूल मंत्र ने। सिक्ख्या कदे झुकण नहीं देगी ते संस्कार कदे डिगण नहीं देणगे, ये कहना है जी सुनील कुमार होरां दा जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सांभा तो। और गुड मॉर्निंग चाह दे कप दे नाल इन्हां ने भेजी है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

पिया पिया ओ पिया पिया वाकई जी प्रोग्राम गीत बहार जो कि 102.57 एफएम रेनबो दी चल रहा जी ते तुसी मेरे नाल नच रहे हो मतलब कि धुम्मा पा रहे हो ते नाल दी नाल म्यूजिक भी इंजॉय कर रहे हो ते उहदे नाल नाल तुसी अपने घर दे काम भी कर रहे होवोगे बिल्कुल जी वह भी नाल नाल चलते रहने चाहिए ने क्योंकि समा जिहड़ा ना वह किसी लई रुकदा नहीं है यह नहीं है कि आपां सिर्फ इंजॉय करना है ते अपने बाकी दे काम छड्डदे ने क्योंकि जी ये सारे शो डेली चलते हैं ते डेली बहुत सारे गुलदस्ते जिहड़े ने वह वक्री वक्री प्रोग्राम्स दे विच असीं भर के लै के आने तो वे वक्रे वक्रे जो फुल चुने होंगे ने गीतों के नवे पुराने गीतों का सुमेल प्रोग्राम गीत बहार हैं जी नैक्सट वाला थोड़ा जि कहते हैं कि पिया पिया तो ना हूँ छड़ के ना हाउस फुल फिल्म की जी गल की जाए तो जो हाउस फुल फिल्म की गल आती है तो अक्षय का चेहरा हाय रब्बा सच्ची वह नाम और जिदा ही मतलब कि मैं खुद सोचती हूँ मैं पता है कि तुम सब भी इंजॉय करते होंगे जो भी कोई उन्होंने शरारत जी आवाज़ कोई भी डायलॉग या कोई भी मीम ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚੁਲਬੁਲੀ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਲਓ ਜੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਹੈ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਮੀਕਾ ਸੁਨੀਧੀ ਐਂਡ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ

FM बैंड 102.7 MHz से प्रोग्राम गीत बहार और राजे रणदीप कौर जी तुहाडे नाल जिथे मैं अक्षय कुमार दे ओ स्टाइल दी गल कीती है ते उथे एक एहो जिहा एक्टर है जिहदे डांस नू लैके जदों भी उन्हां दा नाम लिया जांदा है ना ते इक्को स्टैप उन्हां दा याद आउंदा है ते फिर हासा भी आ जांदा है। हाँ, बताऊं कौन है वो? हाँ जी, साढ़े सुपरस्टार दियोल यानी कि सनी दियोल। भावें कि उन्होंने गदर फिल्म दे विच अपने जोश दे नाल जोर दे नाल एक नलका जड़ा सीगा वो खाड़ के रख दिता सी, पर अज तक उन्होंने ना डांस परफॉर्मेंस दा एक स्टैप नहीं करना आया। ते जी उन्हां दी फिल्म चालबाज चों एक गीत सुन दिया, तेरा बीमार मेरा दिल।

समाचार अखाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: जी दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी 11:55 हो चुके ने, यानी कि 5 मिनट का समा। तो 5 मिनट के आप एक कॉल होर रिसीव करनी है तो उन्होंने गलबात कर दी है, जिन्होंने नंबर डायल किया है 01812342174। जिन्हें कॉल लगी है उन्होंने बड़ा चा चढ़ गया है, तो जिन्हें नहीं लगी है थोड़ा जहा उदास हो गए होने कि समा जोड़ा समाप्त हो चले। तुसी फिक्र ना करो जी, कल सेम टाइम पर सेम प्रोग्राम चलना है, भावें कि आर जे कोई होर होवे पर तुहाडी गलबात हो सकती है। तुसी नंबर सेव करके रख लो जी। आखिरी कॉलर ने इस प्रोग्राम दे गल कर दी उन्होंने नाल। हैलो,
1: सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी,
1: पाली पियाला तो बोल रहा हूं, हुशियारपुर।
0: हाँ जी, ठीक ठाक हो सर?
1: हाँ जी मैम, ठीक ठाक, तुसी दसो ठीक हो जी?
0: हाँ जी, आपां बिल्कुल ठीक हां जी। प्रोग्राम चल रहा है, वखरे वखरे गीत चल रहे ने, वखरी वखरी कॉल्स आ रही ने।
1: हाँ जी, हाँ जी मैम।
0: चलो जी, फिर आप गीत हो जाए क्योंकि गल्ला जी आप करन लग गए तो फिर अपना गीत रह जाना है।
1: कमल हीर दा ला दियो मैम, नचने नू करे मेरा जी।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਫ ਐਮ ਰੇਨਬੋ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ 102.7 ਐਫ ਐਮ 'ਤੇ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਕਮਲ ਹੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।

गांव वालों, बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मां कसम, सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।

किनी प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज द आगाज और ये म्यूजिक जिहड़ा तुहानूं सुनाई दे रहा है वाकई जी वो हसीन वादियां और ठंडी ठंडी हवाएं जहां चलती हों वहां घूमने को तो मन करेगा ही जी। बिल्कुल इदां दी गर्मी दे विच छुट्टियां होण ते छुट्टियां दे विच हिल स्टेशन ते जाण दा मौका मिले और तुसीं लंबी ड्राइव ते होवो तुहानूं कोई कुछ कहण वाला ना होवे तुसीं किसे दी सुणन वाले ना होवो ते प्यारे जी उस इरा दे उस गोल्डन इरा दे सोंग चलदे होण और बिल्कुल तुसीं चुप करके म्यूजिक इंजॉय करदे होवो ते बस चाह दीआं चुस्कियां दे नाल अखां बंद करके पूरा लुफ्त उठांदे होवो दुनिया सारी भुल के किधरे गवाच जाओ। प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज और पहला गीत जड़ा मैं तुहानूं सुनाउण जा रही हाँ गीता दादी आवाज़ दे विच फिल्म है जी आर पार।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से सारे श्रोता साढ़े नाल फिर तो जुड़ चुके ने ते प्रोग्राम कंटिन्यू कर दिया मिड डे मेलोडीज़।

जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

वफादार निकला। क्या बात है, क्या बात है। तेरे बाद भी तुझी से जुड़े रहे हम, ये दिल भी कितना वफादार निकला। और ये जिहड़ी इश्क दी ये वाला जिहड़ा हिस्सा है ना जी, ये बड़ा पवित्र हुंदा, इहदे विच कोई मैल नहीं हुंदी, ये बड़ा ही खूबसूरत हुंदा है। इस अवस्था दे विच हमेशा व्यक्ति दूसरे का भलाई मंगता है, तो भी वह भला हो, हमेशा खुश रहे जिथे भी जाए। ये कोई बैड इंटेंशन नहीं हुंदी, है ना। जिदा राधा कृष्ण, कितना खूबसूरत प्रेम है वाला। राधा कृष्ण जी तो सानू एग्जाम्पल ले लेनी चाहिए। सो तुम मिले तो लगा सब कुछ मिल गया, और जब दूर हुए तो खुद से भी दूर हो गए हम। मोहब्बत अधूरी रही तो क्या एहसास आज भी पूरा है। देखो कितनियां सोहणियां गल्लां। ते लो जी असीं नालों नाल तुहाडे मैसेज जिहड़े ना पढ़ी जा रहे। मैनू ये है कि किसी का मैसेज रह ना जाए, है ना। तो ओके अगला भेजा जी। हाँ लिखते हैं जोरावर सिंह जी, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस शो। मुद्दत से इंतजार था जिनका, शुक्र है खुदा का आज वो आए हैं। वाह वाह शुक्र है जी, वाकई आज मैं मिलना था, वाह वाह दिन बाद आया। कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं। जसवीर सिंह दोहरा आदमपुर तो, वाह वाह आदमपुर वाले हो, बहुत बहुत स्वागत ताड़ा। दुआ कर दे ताड़ा बोल जल्दी बन जाए। सलो जी अगली जड़ी गल बात है वो सानू भेजा जी। कहिंदे ने जुदाई आई है तो की होया, यादा अज भी नाल तुरदियां ने। विछोड़ा सिर्फ राहां दा हुंदा है, मुहब्बत कदे दूर नहीं हुंदी। तू दूर होके भी मेरी दुआ विच यही गल दिल नूं सुकून दिंदी। मतलब अज का शो जरा वेखो कि खूबसूरत होया, जिते ही रल मिल के एक दूसरे नाल कि खूबसूरत गलबात कर रहे हैं। तुसी अपने जज्बात साढ़े नाल शेयर कर रहे हो, और यही सबूत है कि तुसी साढ़े नाल कनैक्ट फील कर पा रहे हो, है ना। तो इदा ही तुसी साढ़े नाल कनैक्ट और कनैक्टिविटी फील करते रहो। तो असी तुहानू फिर अगली जी गज़ल है वह सुना दी है। फिर तो लो जी फिर अभी तुहानू अगली गज़ल जी तुहानू जरूर

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है हीट इमरजेंसीज। इस प्रचंड गर्मी में कैसे करें खुद का बचाव, ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में आपका।
3: धन्यवाद। बहुत
2: जी सर, आज का जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि हीट इमरजेंसीज या गर्मी से संबंधित आपात स्थिति क्या होती है?
3: इसमें ये एक स्पेक्ट्रम है, यानी छोटी मोटी घमौरियों से लेके या पैरों में सूजन से लेकर के एक जो हीट स्ट्रोक तक, ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें जो हीट रिलेटेड इमरजेंसीज आ सकती हैं। लेकिन छोटी मोटी जो घमौरियाँ होती हैं उसमें तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक जैसी जो बीमारी है ये काफ़ी ही संगीन है और इसमें मोर्टेलिटी 50-70% तक हो सकती है इलाज मिलने के बावजूद।
2: बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि संगीन, ये शब्द जहां जुड़ जाता है वहां पे बहुत सारी जिज्ञासाएं भी जुड़ जाती हैं। आगे आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे लेकिन फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक।
4: ले लो ना नारियल।

0: सर, ये हिदायत तो हमने सुन ली और बाकी हिदायतें अब आपसे लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून
0: जी।
1: सर,
0: गुड आफ्टरनून सर, नाम बताएं अपना।
1: आई एम कुंवर सिंह फ्रॉम दिल्ली।
0: जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, सवाल बताएं अपना।
1: सर, आई वांट टू नो व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक एंड एज दिल्ली इट इज इन पीक टाइम नाउअडेज, व्हाट हाउ मेनी प्रिकॉशंस वी कैन टेक टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस हीट स्ट्रोक। Secondly, what is the range of temperature which if human body can tolerate? That's it.
2: थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो सबसे पहले तो यह है कि हीट स्ट्रोक के लक्षण कैसे हैं और क्या उसमें बचाव हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हीट स्ट्रोक ये सबसे गंभीर समस्या होती है, इसलिए इसका नाम हीट स्ट्रोक दिया हुआ है। और इसमें मोर्टेलिटी, जैसे ने बताया कि जो डेथ रेट है वो 50-70% है, डिस्पाइट अगर आप बेस्ट ऑफ केयर देते हैं उसके बावजूद भी, तो बहुत हाई मोर्टेलिटी के साथ ये मतलब डेथ रेट इसमें काफ़ी हाई होने के है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट यूजली वॉमिटिंग करता हुआ आता है, नोजिया वॉमिटिंग, या फिर ऑल्टर्ड सेंसोरियम में यानी गफलियत में आता है, और साथ में उसको प्री कोमा जो कंडीशन होती है, हेडेक भी हो सकता है, और पसीने वगैरह आना उसको बंद हो जाते हैं और वो कुछ अनाप शनाप बकने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में, या फिर वो कोमा में जाने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो, या फिर दौरे पड़ रहे हों, तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम रिकग्नाइज करते हैं जब टेम्परेचर जो बॉडी का होता है वो 106, 107, 108, 109 तक भी चला जाता है। तो इतना हाई टेम्परेचर साथ में गफलियत में और अनाप शनाप बकना और प्री कोमा या कोमा में होना या फिर बेहोश होना और या फिर दौरे पड़ना, ये सब चीज़ को देखते हुए डॉक्टर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं हीट स्ट्रोक का। तो ज़्यादातर ऐसे समय पे ये डायग्नोसिस बनता है जब

0: बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, हीट वेव की स्थिति में ऐसे गर्मी के वो मौसम में बनाया जाता है ये हीट स्ट्रोक का डायग्नोसिस। और इसमें बचाव के जो ये है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को बाहर जो तपती हुई धूप होती है 12 बजे से 2 बजे तक 4 बजे तक भी, तो ऐसे समय में हम लोग बाहर ना निकलें, और निकल भी रहे हैं तो प्रिकॉशंस लें, जैसे कि हल्के रंग वाले कॉटन सूती कपड़े पहने, कैप पहने या गमछा लें, या फिर कोई सर पे ढकने के लिए अम्ब्रेला ले सकते हैं, छतरी होती है वो ले सकते हैं आप, और साथ में कुछ पानी ORS या किसी भी तरल पदार्थ को पीते हुए अपने आप को हाइड्रेशन रखते हुए आप इस अगर निकलना भी है तो आप निकली और ज़्यादा कम से कम समय में अपना काम करके छांव में आप वापस आ सकते हैं, या फिर इसको पोस्टपोन कर दें कि ये जो 12 से 4 के बीच का जो समय है इससे पहले कर लें या इसके बाद करें। और जो लोग जैसे खास करके जो लोग वेंडर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं या पुलिसकर्मी हैं, ये लोग को विवश होते हैं इनको, तो ये लोग भी छाए में ज़्यादातर रहें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रहें, और अपने आप को बीच बीच में हाइड्रेट करते रहें। और जैसे कि मैंने बताया कि अच्छे लूज कपड़े पहने, टाइट सिंथेटिक कपड़े ना पहने, तो ये चीज़ों से आप बचाव कर सकते हैं। और जहाँ तक कि बॉडी का सवाल है, एक्लेमेटाइज धीरे धीरे होता है, एक हफ्ता, दो हफ्ते, तीन हफ्ते लगते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जो गर्मी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे कम भी होती है। तो अगर आप जैसे मान लो कहीं से ठंड इलाके से एकदम से गर्मी वाले इलाके में आते हैं तो आप एक्लेमेटाइज नहीं है, आपका शरीर जो है वो तैयार नहीं है हीट को सहने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में वो झेल नहीं पाता है हीट स्ट्रोक, ऐसे लोगों को बहुत होता है। मान लो जैसे कि आप गर्मी के मौसम में आप हिल स्टेशन पे चले जाते हैं और फिर आप दो हफ्ते वहाँ या तीन हफ्ते वहाँ से वापस आते हैं, तो अगेन आप डी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, यानी कि आप जो पहले एक्लेमेटाइज हो रहे थे हीट को सहने के लिए, लेकिन दो हफ्ते के अंदर ही वो व्यक्ति डी एक्लेमेटाइज होता है, फिर वापस आता है तो हीट में उसको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने हीट वेव की चर्चा की थी, क्या किस तरह से माना जाता है कि ये हीट वेव है?
0: देखिए अलग अलग इसके वो हैं प्रमाण होते हैं, जैसे कि प्लेन की बात करें, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अगर हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तापमान, ड्राई टेम्परेचर जो है, और दो दिन तक लगातार रहता है और दो स्टेशंस में मेजर होता है, तो इसको हम घोषणा कर देते हैं हीट स्ट्रोक, हीट वेव है
1: जी।
0: और सिवियर हीट वेव होता है जब 47 से ज़्यादा लगातार दो दिन तक दो स्टेशंस में हम मेजर करते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह से हम लोग डायग्नोज करते हैं कि ये, और या फिर क्या होता है कि नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर है, मतलब 4.5 से 6.4 तक, अगर वो ज़्यादा है
1: जी,
0: इससे ज़्यादा है तो हम हीट वेव कहते हैं, और अगर 6.5 से ज़्यादा उसका जो एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा है टेम्परेचर, डे टाइम टेम्परेचर की बात हो रही है
1: जी,
0: तो हम कहते हैं कि इसको सीवियर हीट वेव है
1: जी। अगर बात की जाए कि तपिश और इमरजेंसी की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है, तो किस तरह से प्राथमिक उपचार शुरू किया जाए?
0: सबसे पहले देखिए, अगर कोई हीट स्ट्रोक का आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है रास्ते में, या आपके ही कोई परिजन मूर्छित हो जाते हैं या कोई और सिम्टम शो करते हैं, तो उनको पहले ठंड छाए में ले जाएं, ठंडे उसमें ले जाएं, और फिर उसको थोड़ा सा कपड़े ढीले करें, उनसे देखें कि किस स्थिति में है, वो बोलने की स्थिति में है कि नहीं है या बिल्कुल ही बेहोश है, ऐसे में पैर ऊपर कर दें थोड़ा सा, थोड़ा अगर वो होश में है, बातचीत कर रहे हैं, तो पानी दें उनको पीने के लिए, अगर ORS है तो ORS दे दीजिए, नहीं तो वैसे पानी दे सकते हैं, अगर बेहोश हैं तो फिर पानी देने की वो कोशिश नहीं करनी चाहिए, और उनको पानी डालें, छिड़काव करें, या गीला कपड़ा,
1: हाँ
0: गीला नहीं नहीं पूरे बॉडी पे आप डाल सकते हैं, हाथों पे, पैरों पे, छाती पे भी, और पेट पे भी डाल सकते हैं, फेस पे भी डाल सकते हैं, और पंखा करें खूब
1: जी,
0: है ना, काफ़ी उससे पंखा करें तो ताकि टेम्परेचर कम कर सके, और उसको जल्द से जल्द, अगर ज़्यादा सीरियस लग रहा है, उल्टियाँ भी हो रही हैं, गफलियत में जा रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, ऐसे कंडीशन में एकदम से हॉस्पिटल आना बहुत जरूरी हो जाता
1: है जी। डॉक्टर साहब आगे भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे, अभी एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति सर,
2: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
1: जी, बताएं सर क्या सवाल है?
2: मेरा कहना है कि जैसे गर्मी बढ़ती है हमारे दिल्ली NCR में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में
1: जी,
2: सड़क पर जो शरबत पानी की व्यवस्था की जाती है,

0: और उसमें बड़ी मात्रा में शुगर डालते हैं
1: जी,
0: और कलर भी डालते हैं। तो मेरा पूछना है कि, और वो बहुत रिक्वेस्ट भी करते हैं कि पीजिए, तो मेरा पूछना है कि क्या वो हाइजीनिक है या अनहाइजीनिक है, कैसे पता लगाए?
2: जी धन्यवाद। ये हाइजीनिक है नहीं हाइजीनिक है ये तो उसकी जांच करके ही पता लगेगा। बाकी ये अगर वो कलर्स डाल रहे हैं और तरह की एडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। बाकी ठंडाई तो दूध में भी बनाते हैं, दूध में पानी मिला के, अगर पानी साफ़ सुथरा है तो पिया जा सकता है, काफ़ी लोग पीते भी हैं उसको और उससे काफ़ी राहत भी मिलती है लोगों को। तो ये तो एक सेवा भाव से किया जाता है और मेरे को लगता है कि एक बहुत ही अच्छे वो लोग जो होते हैं इस तरह से करते हैं, तो इसमें कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई ऐसी वो नहीं रहता कि भाई किसी को दिक्कत आए ऐसे।
1: हाँ, अगर कोई संशय है तो साथ में लेकर चलें, आपने बताया ये है कि चीज़ें साथ में रखें और बाकी क्या प्रिकॉशंस हैं आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आ चुके हैं। ये है देवदूत पर सौलिया, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस से लिख रहे हैं, नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल होता तो और भी अच्छा लगता, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते। और हमारे पास अगला जो मैसेज आया हुआ है ये है तपोष प्रमाणिक जी पथुरिया बोंगा पश्चिम बंगाल से। Does holding onions in your hand reduce the chance of heat stroke? इनका सवाल है।
2: नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर उसको आप हाथ में रखेंगे, या कुछ लोग पॉकेट में भी रखते हैं अनियन को या प्याज को, तो आपका हीट स्ट्रोक नहीं होगा। ये गलत धारणा है। बल्कि आप अगर पानी पियेंगे और तरल पदार्थ लेंगे और अल्कोहल और अदर बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, वो कम लेंगे, टी कॉफ़ी कम लेंगे, और जैसे हम अभी नारियल पानी की गाना चल रहा था,
1: हाँ,
2: नारियल पानी या छाछ है, ठंडाई है, या ORS घोल के भी आप, या सिर्फ सिंपल पानी ही और नमक डाल के उसमें नींबू डाल के मिला के आप अपना घर में भी एक नींबू पानी बना सकते हैं, लेमनेड। तो ये चीज़ कैरी करेंगे तो आपको, क्योंकि पसीने में सोडियम सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्ट और वाटर का सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, मतलब अगर धूप में निकल रहे हैं तो कुछ खा कर ही निकले, ऐसा भी सच है?
2: हाँ जी बिल्कुल। देखिए इसमें क्या होता है, धूप में एकदम से आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, यानी कि सेल का जो एक्टिविटी है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो उसमें एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर एनर्जी नहीं है आपके पास तो आपके बॉडी की एनर्जी वो तोड़ने लग जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे कंडीशन में, यानी कि शुगर आपका ब्लड में बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अगर कुछ खा के चलेंगे तो वो स्थिति नहीं रहेगी, आपके बॉडी को एनर्जी मिलता रहेगा आपके खाने से, नहीं तो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं उसको दिक्कत हो सकती है।
1: जी, तो बहुत सारी हिदायतें हैं हमारे पास और लगातार आपको मिलती रहेंगी। अभी हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, हालांकि हम इस विषय पर काफ़ी चर्चा बहुत देर से कर रहे हैं। रेडियो डॉक्टर के संचालनकर्ता एवं चिकित्सक जी को मेरा प्रणाम। कृपया गर्मी के मौसम में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए एवं किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस पर मार्गदर्शन करें। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं, डॉक्टर हेमचंद्र भट्ट जी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, राजकीय महाविद्यालय रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से।
2: जी, अभी जैसे मैंने बताया कि जहाँ तक हमें लिक्विड की बात है, उसमें हमें खास करके अपने जो नॉन बेवरेजेस वाले जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे पेप्सी कोला, ये सब जो होते हैं, कोका कोला या फेंटा और ये सब की, या फिर अल्कोहल हो गया है ना, इनकी सेवन कम करना चाहिए, बियर हो गया। तो इसके अलावा जैसे कि आप आजकल जगह जगह पे आप देखते हैं वाटरमेलन के फ्रूट्स भी मिलते हैं, या फिर खीरा काट के लोग बेचते हैं, वो सब भी आप, जैसे उसमें भी काफ़ी पानी होता है और काफ़ी ठंडा होता है, और पानी भी पीते रहें, ORS पीते रहें, ये सब आप करेंगे तो टी कॉफ़ी आपको कम करना पड़ेगा ऐसे गर्मी के मौसम में।
1: जी, अगला सवाल हमारे पास है सरोज मल्होत्रा जी का, साकेत मेरठ से लिख रही हैं, नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह कुछ खा के भी नहीं जाते, वहाँ

0: होती है उनको कैसे बचाएं, स्कूल से आते हैं तो बहुत घबराए होते हैं, उनके लिए क्या कुछ जरूरी है?
1: जी देखिए, स्कूल में भी डायरेक्शंस जाते हैं, स्कूल्स में भी एवरी या तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी इस मुद्दे को उठा सकती है वहाँ स्कूलों में, कि बच्चों को हर पीरियड के बाद एक वाटर ब्रेक दिया जाए, सबको बोला जाए कि पानी पीना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, थर्स्टी होते हैं तभी, बहुत ज़्यादा थर्स्टी होते हैं तभी पानी पीते हैं, नियमित तौर से पानी नहीं पीते हैं। तो एक वो चीज़ हो सकता है, फ्रूट्स वगैरह जो हैं आप, जैसे वाटर मेलन है या कुकुम्बर हैं या और अन्य जो फ्रूट्स जिसमें वाटर होता है, वो वाले आप फ्रूट्स बच्चों को दे सकते हो। एक फ्रूट ब्रेक और वाटर ब्रेक का जो एक गर्मी में मेरे ख्याल से हर पीरियड के बाद एक वाटर ब्रेक तो लेना ही चाहिए।
0: जी
1: तो ऐसे चीज़ें करके गर्मी के प्रकोप से आप बच सकते हैं।
0: जी तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें अभी आपसे और भी होनी बाकी हैं, लगातार हमारे श्रोता भी हमसे जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, क्या कहते हैं कि कौन सा गीत सुनवाया जाए? गेंदा फूल सुनवा दिया जाए
1: गेंदा
0: आपकी
1: फूल,
0: पसंद का?
1: हाँ
0: जी

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं बहुत ही विशेष चर्चा। गर्मी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा आज का विशेष जो विषय है वो है हीट इमरजेंसीज, और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार जी। और आज लगातार आपको हिदायत दी जा रही है कि कैसे गर्मी में आप सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि खान पान कैसा हो, बच्चों के बारे में हमने चर्चा की। खासकर ये देखा जाता है कि जब कोई गर्मी से घर के अंदर आता है तो तुरंत ठंडा पानी पीने की कोशिश करता है, तो ऐसे में कहते हैं कि गर्मी को गर्मी मारती है। तो क्या सही होता है, चाय कॉफी का सेवन किया जाए या ठंडी चीजें ली जा सकती हैं?
2: जी, एकदम से गर्मी से आके एकदम से बिल्कुल ठंडा चिल्ड कोल्ड और आइस वाला ड्रिंक इस तरह से नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गला खराब होने के चांसेस

0: रहते हैं आप, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाले जो ड्रिंक्स हैं, और ख़ास करके जो मैंने बताया जिसमें फिज़ नहीं होता है, जो ड्रिंक्स होते हैं जो आजकल इंडियन उसमें काफ़ी जो बेवरेजेस हैं जो जिसमें फिज़ नहीं होता, कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं होते, जैसे छाछ हो गया, ठंडाई हो गया, नींबू पानी है, या फिर अभी नारियल का पानी की बात हो रही थी, तो ये सारे जो रूह अफ़ज़ा भी लोग पीते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ें जो जिसमें बेवरेजेस कार्बोनेटेड बेवरेजेस ना हो, और जैसे कि ये कॉफ़ी और चाय या फिर अल्कोहल, इनसे भी बचना चाहिए, खास करके गर्मी में, ताकि क्योंकि इनसे ना थोड़ा सा यूरिन ज़्यादा बनता है और डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं,
1: होते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है, थोड़ा सा ये बच के रहना है। श्रोता हूँ आपको, हमारे अगले कॉलर लाइन पर आ चुके हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना शुभ नाम बताएं सर।
2: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब सुन रहे हैं।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: सर मुझे पूछना ये है कि जो ये ORS होता है, जो BP के मरीज या शुगर के मरीज हैं वो इसको ले सकते हैं?
0: हाँ जी, ले सकते हैं इसको। ORS जो है इसमें, क्योंकि गर्मी में खास कर क्या होता है कि आपका फ्लूइड लॉस होता है, साथ में सॉल्ट भी लॉस हो रहा है आपके पसीनों में, तो ये ORS जो होता है ये आप ले सकते हैं एज अ, लेकिन जो खास करके जो जिनको हार्ट की बीमारी है, या फिर कुछ लोग जिनको बोला गया कि भाई सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेना है, ऑल्दो इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको एक बार ध्यान रखना चाहिए कि इसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट तो होता ही है, और शुगर होता है इसमें, और वाटर होता है, तो ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें, खास करके कुछ एल्डरली होते हैं जो सॉल्ट का जो ऊपर नीचे से उनको दिमाग में गफलियत में जाने लग जाते हैं, तो उनको खास करके थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज ये लेने में कोई इशू नहीं है। ORS आप ले सकते हैं, और घर में भी आप ORS बना सकते हैं, जैसे कि 1 लीटर में आपने चम्मच 2 चम्मच चीनी डाल के नमक, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो इस तरह से भी आप, या फिर नींबू पानी भी आजकल लोग पीते हैं, छाछ पीते हैं, ठंडाई पीते हैं, या नारियल पानी, ये इस तरह के जो सेवन है आप इसको भी कर सकते हैं ORS की जगह।
1: डॉक्टर साहब, किन किन लोगों को हाई रिस्क हो सकता है इस मौसम में?
0: हाई रिस्क में देखिए, सबसे छोटे बच्चे हैं, या एल्डरली हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, या फिर जिनको बाहर निकलना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो या कैसा भी मौसम हो, और फिर उनको वहाँ पे वर्जिश, वो मतलब उनका काम ऐसा है कि उनको कसरत मतलब, या फिर उनको मेहनत का काम करना पड़ता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फार्मर्स हैं, या फिर जो वेंडर्स हैं, या फिर जो लेबरर्स क्लास है, या पुलिसकर्मी भी आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी गर्मी में उनको ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, तो ये लोग काफ़ी इनको चांसेस हाई रहते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, बेघर होते हैं, ये लोग भी काफ़ी हाई रिस्क में रहते हैं, और एल्डरली की बात करें तो एल्डरली तो अगर बाहर नहीं भी निकल रहे हैं, घर में हैं, तो भी उनको हीट स्ट्रोक के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मेडिसिंस ले रहे होते हैं जिससे वैसे ही डिहाइड्रेशन में होते हैं, और थोड़ा सा भी और एक्स्ट्रा डिहाइड्रेशन हो जाए तो इनको दिक्कत आ सकती है, खास करके जो एल्डरली हैं, जो खुद नहीं चल सकते, पानी नहीं ले सकते, या बेड रिडन हैं, ऐसे लोग भी काफ़ी हाई रिस्क में रहते हैं, क्योंकि इनको किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो खास करके जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो बता नहीं सकते उनका डिहाइड्रेशन क्या, उनको कब प्यास लग रही है, या उनको डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, वो सब वो अपना जो है वो बता नहीं पाते, तो ऐसे में वो भी बड़ी जल्दी ही उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी काफ़ी कम होता है, जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो भी काफ़ी कम होता है, तो थोड़ा सा डिक्रीज होते ही, या कभी लूज मोशन वॉमिटिंग हो गया
1: जी,
0: तो ऐसे में तुरंत वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं
1: जी। तो बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से ध्यान में रखनी है, जिसको डॉक्टर साहब आपको लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे पास मैसेज आया हुआ है सतीश कुमार जी का, रोहिणी दिल्ली से लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब, गर्मी में हमको कौन से ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए जिससे गर्मी से बचाव किया जा सके?
0: देखिए, ड्राई फ्रूट्स तो कभी भी आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उसको इनफ वाटर ले रहे हैं ताकि वो, और ज़्यादा चीज़ तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा लेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है, अगर नियमित तौर से आप थोड़ा बहुत ले रहे हैं, आपके रूटीन में बना हुआ है, तो ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको डाइजेशन के लिए उसको आप पर्याप्त मात्रा में उसको वाटर लें, क्योंकि जो प्रोटीन डाइट होता

0: हाई प्रोटीन डाइट्स वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा डाइजेशन होने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में पानी का ख्याल रखें।
1: जी, अगला सवाल मैसेज के रूप में हमारे पास है संजय एम जोशी जी का, पुणे से लिख रहे हैं कि हाउ टू कीप सेफ मोबाइल इन हीट वेव्स कंडीशन एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिकमिंग हॉट।
0: जी, बहुत सारे एप्लीकेशंस हम चालू रखते हैं अपने फ़ोन में, और ये अच्छा है कि आपको फ़ोन हेल्थ के बारे में भी आपको चिंता है। ऑफ कोर्स इस ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, ख़ास करके एसी। आप देखेंगे एसी के बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं, फायर के इंसिडेंट्स आते हैं कि एसी में आग लग गया, क्योंकि वो उसका जो बाहर वाला पोर्शन है वो डायरेक्ट सनलाइट में रहता है और अंदर वो कूल कर रहा है, और तो ऐसे में उसकी जो तार है, वायर्स हैं, वो काफ़ी गर्म हो जाती है। ऐसे ही फ़ोन भी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, या जैसे मान लो डैशबोर्ड पे रख दिया, आपने कार चला रहे हैं डैशबोर्ड पे रख दिया,
1: जी
0: डैशबोर्ड पे धूप आ रही है सीधा, तो ऐसे में वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो सबसे यह है कि आप उसको कूल रखें, ठंडे छाँव में रखें, तो वो गर्म, और ज़्यादा यूज़ करने से भी वो गर्म होते हैं। तो एप्लीकेशन सारे बंद कर दें जैसे, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है फ़ोन अपने आप ही विदाउट यूज़, तो फिर उसको दिखाना की ज़रूरत है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बैटरी से रिलेटेड।
1: जी हालांकि देखिए ये थोड़ा सा विषय से हटकर था, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने आपको मार्गदर्शन दे दिया है, क्योंकि ये तो आपने मोबाइल की जो सुरक्षा थी वो पूछ ली है,
0: जी
1: और शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ मोबाइल की भी सुरक्षा का यहाँ पर जिक्र हो गया है। लेकिन हाँ, इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जो कि आपने सवाल किया, और जागरूक किया है हमारे श्रोताओं को भी। बहुत सारे हमारे पास जो आ रहे हैं मैसेजेस वो लिख रहे हैं हमारे श्रोता के कार्यक्रम उनको बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैसेज है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ये जानना चाहते हैं के कॉम्प्लिकेशंस हैं हीट की वजह से, अगर वो देर से होते हैं तो उनको कैसे पहचाना जाए?
0: जी कॉम्प्लिकेशन देखिए, ये मैंने बताया एक कॉन्टिन्यूम है ये, अगर आप इसको अर्ली पहचान लेंगे तो अर्ली इलाज हो जाएगा।
1: जी
0: अगर इसको नज़रअंदाज करते हैं या आप इसको पहचान नहीं पाते हैं, तो फिर ये भयावक रूप ले लेते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक में ही सीधा प्रेजेंट होगा। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि मान लो किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं हीट में, काफ़ी लोगों को ना नसें चढ़ जाती हैं, जैसे मसल्स में, जैसे आर्म्स में या लेग्स में,
1: जी
0: एकदम से बैठे बैठे या चलते हुए या थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो मसल क्रैम्प हो गया, जिसको हम नस चढ़ना भी कहते हैं। ऐसे कंडीशन में यानी कि आपका बॉडी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है, वाटर की कमी हो रही है, तो ये पहचानना ज़रूरी है। फिर यूरिन का जैसे कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, इससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। जब भी आप यूरिन जाएं तो ज़रूर अपना कलर देखें यूरिन का, तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लेंगे कि आपको, और उसके तुरंत बाद यूरिन करके आएं तो ज़रूर पानी पिए अगर वो डार्क है ना। या एक आजकल क्या है, एक और होता है कि ग्लास, जो ठंड में जो ग्लास रखते हैं वो छोटा रखते हैं या वो नॉर्मल होता है, लेकिन गर्मी में वो बड़ा ग्लास रखें, ताकि जब भी आप पानी पिए तो कम से कम 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी पिए, तो एक बार में आपका।
1: क्वांटिटी भी सर कुछ होनी जरूरी है कि 1 लीटर पिए या 2 लीटर पिए, या
0: जी
1: कुछ रोग ऐसे भी होते हैं मैंने देखा है कि जिनमें कहा जाता है कि पानी कम पिए, तो ऐसे लोग कैसे सुरक्षा करें अपनी?
0: हाँ, देखिए जो जिनको पानी बोला जाता है, जैसे किडनी डिजीज वाले पेशेंट हैं, उनको सूजन पहले से ही है ना, उनको सॉल्ट
1: उनको
0: का
1: पानी
0: भी,
1: की
0: उनको
1: मात्रा
0: सॉल्ट
1: कम
0: भी
1: बताई
0: बोलते हैं
1: जाती है। जी
0: कि सॉल्ट भी उनको कम लेना है, और उनको बोला जाता है कि 1 लीटर ही आपको पानी लेना है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि गर्मी में इनको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि आपको इनसेंसिबल लॉसेस भी, आपके इनसेंसिबल लॉसेस मतलब जैसे कि आप सांस ले रहे हैं तो आपके जो सांस आप देखेंगे तो गर्म होता है सांस, तो उसमें भी आपके लॉसेस होते हैं, यूरिन में लॉस होता है, आपके स्वेटिंग में लॉस हो रहा है, तो ये बढ़ जाता है गर्मी में। तो ऐसे में 1 लीटर के बजाय वो उसको 1.5 लीटर माना जाता है, 1.5 या 2 लीटर भी माना जाएगा। तो ऐसे में लोग जो हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि अभी गर्मी है, जैसे मैं ठंड में तो 1 लीटर से कम ले रहा था, लेकिन अभी गर्मी है, क्या मुझे 1 लीटर से कम ही लेना है या 2 लीटर तक मैं पानी ले सकता हूँ, ये अपने डॉक्टर से सलाह कर
1: परामर्श ले
0: परामर्श
1: सकते
0: करके
1: हैं। जी डॉक्टर साहब, गर्मी जनित रोगों से और किस तरह की समस्या शरीर में हो सकती है? जैसे अगर गर्मी लग जाती है तो मतलब बाकी और भी कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं क्या उससे?
0: जी देखिए, मैंने बताया ना ये जो है पूरे बॉडी

0: में इफेक्ट करता है जो गर्मी है ना, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे बात करें तो ब्रेन को इफेक्ट करता है ये, क्योंकि जो है जो आपका जो सोचने की क्षमता है, फिर इसमें मैंने बताया कि कोमा में चला जाता है या फिर चक्कर आने लग जाते हैं, फिर पेट में जैसे नौजिया वॉमिटिंग या उल्टियाँ आने लग जाती है, हार्ट में भी समस्या आ सकती है जैसे कि हार्ट सही ढंग से काम नहीं करेगा या एबनॉर्मल वे में जो रेगुलर बीट है वो रेगुलर बीट ना होकर इरेगुलर बीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह किडनी में भी असर होता है, तो किडनी भी आपकी शट डाउन होने के चांसेस रहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में सोडियम का ऊपर नीचे होता है, ग्लूकोज आपका नीचे चला जाता है, तो इस तरह से फिर मांसपेशियों में जो होता है जकड़न होती है, ऐंठन हो जाती है, नस चढ़ जाती है, और इसके साथ साथ आपको जो पूरे बॉडी में जो सेल्स
1: हैं। कभी कभी सर ये भी देखा जाता है कि सर्दी भी लोगों को लगने लगती है, जब उनको लू लग जाती है तो उसकी वजह से ये भी समस्या होती है, तो ये कैसे बचा जाए इन चीज़ों से?
0: जब अगर कंपन होने लग जाए आपको, तो ये इसका मतलब यह है कि बॉडी और हीट बनाने की कोशिश कर रही है, या ये तब होता है जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो लू लगते हैं उसको हम क्या करते हैं कि टब में, हॉस्पिटल में एक टब होता है, उसमें हम ठंडा पानी 0 to 5 degrees centigrade में उसको आइस वाटर बाथ देते हैं, ताकि टेम्परेचर जो इनका जनरली 106, 107, 108 जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको तुरंत हम 102 तक ला सकें, जो कि हाफ एन आवर में हमें लेके आना होता है
1: जी।
0: तो ऐसे में अगर जैसे टेम्परेचर एकदम से नीचे ला रहे हैं तो उनको ठंड लगने की यानी कंपन होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में हम एक दवा देते हैं, इंजेक्शन होता है मिडाजोलम, वो हम देते हैं और ताकि उसका कंपन दूर हो जाए, और फिर हम उसको जैसे ही 102 तक आता है टेम्परेचर उसको हम टब से बाहर निकाल देते हैं, और फिर हम उसको नॉर्मल एयर ड्राई या स्प्रिंकलिंग और एयर ड्राई से हम उसको धीरे धीरे हम पहले हम तेज़ी से लाते हैं, फिर उसको हम धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करते हैं।
1: डॉक्टर साहब ये भी देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई वगैरह हैं वो कंबल ओढ़ के भी गर्मी में इसलिए काम करते हैं कि उनको हीट वेव्स का असर ना हो, तो क्या कहीं ये ऐसा पहनावा ज़रूरी है कि अगर थोड़े भारी कपड़े पहने, जैसे कि हमने आपसे सुना कि हल्के कपड़े पहने, तो वो क्या रीज़न होता है?
0: देखिए कभी भी डार्क गहरे रंग वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और कंबल तो खैर आपका जो इवेपोरेशन है वो नहीं होने देगा। तो आपको क्या होता है कि ये बेसिकली आपको इवेपोरेशन होना चाहिए, यानी कि जो हीट है जब उसमें क्या होता है, जो तापमान है आपके बॉडी का वो ठंडा तब होता है जब आपका जो भाप बनती है, आपका जो स्वेट है वो भाप बनता है, तो नीचे वो त्वचा को वो ठंडक पहुंचाता है। तो ऐसे कोई भी कपड़ा पहनेंगे जिससे कि बहुत थिक कपड़ा है या कंबल ओढ़ रखा है या कुछ ऐसा है, तो वो इवेपोरेशन आपका होगा नहीं। और सबसे ज़्यादा जो हमारा हीट लॉस होता है वो इवेपोरेशन से होता है और रेडिएशन से होता है हमारा, और कन्वेक्शन से भी होता है, जो एयर आती है ठंडा हमें लेके जाती है बॉडी का, और कंडक्शन से भी हीट लॉस होता है। तो ये चार मैकेनिज्म होते हैं कि एक तो जो भाप बन के उड़ता है, जो हवा लगती है हमें उस पर, और जो जो रेडिएशन हीट का होता है, यानी कि वो अपने आप ही वो बाहर निकल रहा है हीट। तो ये सारे जो कंडीशन से ही हमारा, तो ऐसे कंडीशन कोई भी सिस्टम अगर कोई भी चीज़ जो इनको रुकावट पैदा करती है तो वो हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा देती है
1: जी। तो श्रोताओ आज हम बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि गर्मी से किस तरह की समस्या हो सकती है और आपको कैसे बचाव करना चाहिए, और अगर बच्चे हैं घर में, बुजुर्ग हैं, तो किस तरह की खास तौर पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और आप स्कूल गोइंग है तो भी आपको बहुत ही हिदायत दी जा रही है कि किस तरह से आप सावधान रहें, क्योंकि कुछ घंटे होते हैं जिनमें सावधान रहने की बड़ी ज़रूरत होती है, जो गर्मी का समय होता है, दोपहर का जो समय होता है उससे बचें, डॉक्टर साहब ने आपको ऐसा बताया है। डॉक्टर साहब जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारी सावधानी की ज़रूरत होती है, और आपने बताया कि हीट वेव्स का जो समय होता है जब डिक्लेयर हो जाता है तो बहुत सुरक्षा की ज़रूरत होती है। ऐसे में पर्टिकुलर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, अगर वो स्कूल गोइंग हैं तो किस तरह का उनका खान पान हो कि सुबह वो ब्रेकफास्ट करके निकलें, या बीच में कुछ सावधानी रखने के तौर पर कुछ वो एनर्जिक चीज़ें ले सकें, ऐसा कुछ बताएं।
0: हाँ जी, देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि तरल पदार्थ आप लें और कभी भी बिना खाए नहीं भेजना चाहिए। तो ऐसे में जैसे कि वाटर बॉटल जो होता है, आजकल एक के बजाय दो वाटर बॉटल आप दे सकते हैं, या

0: पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा वाटर बॉटल दे सकते हैं, और ख़ास करके अगर पेरेंट टीचर एसोसिएशन हैं तो वहाँ पे भी ये, और वैसे भी उनके पास इन्फॉर्मेशन जाता ही है कि बीच बीच में वो एक ऐसा वाटर ब्रेक करते हैं जिसमें बच्चों को बोला जाता है कि पानी आपको कंपलसरी पीना है अपने उससे, और बच्चों को भी जब वो आए बच्चे वापस तो देखें कि कितना पानी पिया है, है ना। अगली बार आप लिख भी सकते हैं उनके जो उनकी कॉपी में या फिर उनका जो डायरी होता है उस पर आप लिख सकते हैं कि बच्चा पानी नहीं पी रहा है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपस में मिल के टीचर से प्रिंसिपल से तो बच्चों का थोड़ा सा बिहेवियर, क्योंकि बच्चे तो कभी पानी पीते नहीं हैं जब तक उनको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, तो ऐसे कंडीशन में, और जैसे कि मैंने बताया कि कपड़े थोड़े से जो हैं, वैसे भी आजकल जो स्कूल्स हैं आप देखते होंगे कि ठंड के कपड़े अलग होते हैं यूनिफॉर्म, और गर्मी के वो उसी हिसाब से गर्मी के यूनिफॉर्म होते हैं, तो और जैसे छतरी मैंने बताया, छाता या कोई कैप, ये सब आप देखें
1: जरूर। हाँ, सावधानी के तौर पर साथ में रखें। आगे बहुत सारे आपसे सवाल हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार, मैं उत्तराखंड से रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: जी
0: नमस्कार, जी
1: स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है।
2: जैसे सफर में जाते हैं तो ये बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं पानी की जगह में, वो कोल्ड ड्रिंक पीने की मांग करते हैं ठंड में, तो गर्मी में तो, और वो जो पानी की जो बोतलें मिलते हैं उनसे तो प्यास बुझती नहीं, तो क्या ये ठीक है कोल्ड ड्रिंक?
0: हाँ जी, अभी हम एक आधा घंटे से यही डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ड्रिंक्स होते हैं ये अवॉइड करना है, ये बिल्कुल सही नहीं होता है। माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़्यादा नहीं सेवन करना है, अगर एक आध बार है, लेकिन ये अगर पूरे तरह से आपने पानी को ही रिप्लेस कर दिया कार्बोनेटेड ड्रिंक से तो ये चीज़ सही नहीं है। आपको बीच बीच में नॉर्मल पानी भी पीना है, आपको छाछ भी पी सकते हैं, ठंडा ही पी सकते हैं, आप ORS भी ले सकते हैं बीच में, तो ये सब चीज़ आपको नींबू का पानी जैसे हो गया ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ लेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और ये चीज़ जैसे मैंने बताया कि चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये पूरी तरह से अवॉइड करें।
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा।

0: तो श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो हीट इमरजेंसीज पर है कि गर्मी से आपको किस तरह की समस्या हो सकती है, अगर हो गई है तो कैसे सावधान होकर उसका उपचार करें। डॉक्टर साहब लगातार आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहा जाता है कि 107 108 तक टेम्परेचर हो जाता है, कि आपके पास ऐसा कोई केस आया है और वो आपको लगा है कि क्योरेबल रहा?
1: जी देखिए, इसमें 109 110 भी पहुंच जाता है। इतना हाई टेम्परेचर से क्या होता है, सारे बॉडी के सेल्स हैं डैमेज मोड में चले जाते हैं, सारे जो हीट की वजह से वो डैमेज होने लग जाते हैं। हमारे जो दिमाग में एक मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है जिसमें वो थर्मोस्टेट होता है हमारे पूरे बॉडी के हीट से रिलेटेड। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, ये थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है, तो आपको पसीना आना बंद हो जाएगा। जब पसीना आना बंद हो गया तो आपका टेम्परेचर बॉडी का एकदम से राइज होने लग जाता है। और हमने देखा है कि लास्ट ईयर ही 109.4 डिग्री सेंटीग्रेड का एक नौजवान जो कि स्लीपर क्लास में ट्रेन में एक पूरे 24 घंटे का सफ़र करके ऊपर वाली बर्थ पे सोता हुआ अकेला आया था, और जब दिल्ली में आया तो उसको उल्टियाँ होने लग गई और वो गफलियत में चला गया। जब हमारे पास आया तो वो बिल्कुल ज़्यादा मतलब बेहोशी हालत में था, और हमें उसको यहाँ तक कि उसको मशीन पे डालना पड़ा, और तुरंत हमने उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए टब में डाल के उसका आइस कोल्ड वाटर में टब में उसको गर्दन से नीचे उसको हम गर्दन ऊपर रखते हैं और उसको हमने टेम्परेचर एकदम से कम किया, और वो 2 हफ्ते तक रहा हमारे पास, लेकिन वो सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छा होके गया, चल के गया वापस।
0: तो मुझे लगता है कि जिनको इस तरह की समस्या है वो थोड़ा सा आशान्वित हो गए होंगे कि अगर ये समस्या है तो वो ठीक हो जाएंगे, जैसा कि

0: आपने बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है। डॉक्टर साहब, अगर मेडिसिन की बात करें तो किस तरह से ये माना जाए कि इस स्थिति में मेडिसिन सहायक हो सकती है?
1: देखिए, इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स है नहीं, बल्कि जबकि ये टेम्परेचर आपका 106, 7, 8, 9 जा रहा है, तो ऐसे में लोग सोचेंगे कि पैरासीटामोल दे दें, तो ऐसा पैरासीटामोल देने से टेम्परेचर कम नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ जो प्रॉब्लम है वो थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम है। थर्मोस्टेट आपका ख़राब हो गया है। थर्मोस्टेट जब तक काम करता रहता है और आपको मान लो कोई पायरोजेंस है ना, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया, वायरस या कुछ है, तो ऐसे कंडीशन में आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हीट स्ट्रोक में पैरासीटामोल काम नहीं करता है, और कोई भी मेडिसिंस उसको टेम्परेचर को काम नीचे लाने के लिए हमारे पास है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ हवा और पानी का छिड़काव, और जहाँ हो सके हीट स्ट्रोक में तो सिर्फ वो भी काम नहीं करता है। अगर हीट स्ट्रोक की बात करें तो अगर आप सिर्फ हवा कर रहे हैं और पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो वो फील्ड में ठीक है, लेकिन जब हीट स्ट्रोक की बात करते हैं तो वो भी काम करना, मतलब वो टेम्परेचर कम करता है नो डाउट, बट जितना जल्दी से हमें उसको टेम्परेचर कम करना है वो नहीं कर पाता, उसमें बहुत समय लगता है। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है कि टब में उसको डाल के जो एक आइस वाटर बाथ जो होता है, अगर आपके पास आइस नहीं भी है तो भी आप ठंडे पानी में, अगर जैसे नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर वाला पानी है, ये गर्म टंकी का पानी नहीं होना चाहिए
0: जी।
1: तो ऐसे पानी में भी अगर आप डिप कर दें उसको, है ना, तो ये है कि भाई उसका जो नाक है मुंह है ऊपर रहना चाहिए, और उसको आप जैसे हॉस्पिटल में हम लोग का तो यही ट्रीटमेंट होता है, और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। जैसे मान लो शिवरिंग होती है, मैंने बताया था कि मिडाजोलम एक दवा होती है हम देते हैं, और जैसे अगर दौरे पड़ रहे हैं तो दौरे की हम दवा देते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हीट स्ट्रोक के लिए कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो हम देते हैं
0: कंट्रोल के।
1: हाँ, तो इसका बस वही है कि आपको बचाव है, और ज़्यादा होने पे आप जैसे इसमें आईवी फ्रूट्स देते हैं हम लोग, या जो क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स सोडियम की कमी होती है और ये होता है, तो आईवी फ्रूट्स देते हैं। अगर शुगर कम है तो शुगर का हम उसका डेक्सट्रोज हम शुगर का ड्रिंक वो देते हैं,
0: दिया जाता है जी। हीट एग्जॉशन क्या होता है डॉक्टर साहब?
1: देखिए, हीट एग्जॉशन एक वो स्थिति है जैसे इसमें जो थर्मोस्टेट है आपका, जैसे हीट स्ट्रोक में थर्मोस्टेट पूरा काम करना बंद कर देता है, यहाँ पे क्या है कि ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, थर्मोस्टेट में गड़बड़ी आना चालू हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जो आपको स्वेटिंग हो रही होती है लेकिन आपको चक्कर आने लग जाएंगे, गफलियत में की स्थिति में आप धीरे धीरे आप जाने लग गए हैं, है ना, जो आपका टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लग गया है ना, लेकिन अभी भी आपको स्वेटिंग जारी है। स्वेटिंग हीट स्ट्रोक में बिल्कुल स्वेटिंग बंद हो जाता है ना, स्वेटिंग बंद हो जाएगा, और लेकिन हीट एग्जॉशन अभी जारी है, तो ये एक हीट स्ट्रोक से पहली वाली स्थिति है जहाँ पे आपको ये मतलब आपको हीट स्ट्रोक के तरफ ले जाने वाली स्थिति में ये आप जा रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर इलाज करें हम लोग तो हीट स्ट्रोक पैदा नहीं होगी, और हम इसको अच्छा रिस्पांस मतलब किसी को भी हम बचा सकते हैं
0: जी। यानी समय पर अगर हम जागरूक हो जाएं इस स्थिति में तो बचाया जा सकता है उस स्थिति को आने से जो कि बहुत ही भयावह हो सकती है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि जिनमें डेथ तक हो जाती है, थोड़ा सा जागरूक कर दें लोगों को।
1: 50-70% मोर्टेलिटी है, यानी कि 100 में से 50 से 70 मरीज जो है डिस्पाइट एडिक्वेट ट्रीटमेंट, हाँ एडिक्वेट ट्रीटमेंट के बाद भी, ये डाटा जो है वेस्टर्न का है, तो ये काफ़ी सीरियस मैटर है, इसलिए इसको स्ट्रोक कहा गया है, क्योंकि जो ऐसे आप ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, उसकी भी मोर्टेलिटी काफ़ी होती है
0: जी।
1: जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है या बहुत बड़ा स्ट्रोक होता है, तो उसी तरह से हीट स्ट्रोक कहा गया है इसको
0: जी। तो श्रोताओं, मैं समझ पा रही हूँ कि आप भी बहुत ही सचेत हो गए होंगे, क्योंकि बहुत हल्के में ना लें कि गर्मी का मौसम है, आप किसी तरह से भी निकल जाएं, आपको काम है, लेकिन आपको निकलना कैसे है ये डॉक्टर साहब ने आज आपको जागरूक किया है कि आपको किस स्थिति में निकलना है, क्या प्रिकॉशन लेके निकलना है। जाना तो ज़रूरी है, लेकिन जाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको बड़े जागरूक रहना है। डॉक्टर साहब, और क्या कहना चाहेंगे?
1: एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि अच्छा। आप ना जैसे रेडियो सुनते रहें, रेडियो पे जानकारी मिलते रहती है, हीट वेव कब घोषणा हुई है, या न्यूज़पेपर में ये जानकारी, या सोशल मीडिया पे भी आजकल आ जाता है ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, तो इस तरह के जो अलर्ट आपने क्षेत्रीय अलर्ट है ना, उसको आप कर सकते हैं। सचेत ऐप है, वो आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, जो सचेत ऐप है, वो भी आप डाउनलोड करके उसमें भी आपको मौसम की जानकारी

0: या कोई भी वार्निंग होता है तो वो आपको मिलता रहता है वहाँ से
1: जी। तो श्रोताओं, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से मिल गई होगी और आपने बहुत कुछ नोट डाउन कर लिया होगा और जीवन में इसको अपना लीजिए, क्योंकि गर्मियां तो हर साल आती हैं। आपको हर साल हम सचेत भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल लापरवाह मत होइए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम को आपने बहुत गौर से सुना होगा और इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। आपको बता दें कि हमारे आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, जिनसे आज हमने चर्चा की हीट इमरजेंसीज पर। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है health@dehli.com। और अब आपसे बस इतना कहूंगी कि अब दीजिए इजाजत, अनुराधा को नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: www.radiomadhuban.com। और अब आपसे बस इतना कहूंगी कि अब दीजिए इजाजत, अनुराधा को नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: कि आसपास एक मतलब एक कुत्ता सी, तो उन्होंने रोक के दो तीन कुत्ते सीगे, उन्होंने एक बोल जा सीगा उत्थे मिट्टी दा सीगा, तो उसदे विच उन्होंने ना पानी पाया उन्होंने लिए, तो मतलब ये इंटरनेट ते बहुत ही वायरल हो
1: जी
0: रही है
1: जी जी
0: वीडियो, तो
1: जी
0: मैनूं लगदा लोकां ने देखी जरूर होएगी। इस तो सानूं आही सीखण नूं मिलदा है कि एक गर्मी जिन्नी सानूं लग रही है उन्ने तुहाडे आस पास जिहड़े स्ट्रे डॉग्स ने या जिहड़ी चिड़िया ने, कई लोग पानी जरूर रखते ने, काफ़ी अलग वजह ना भी रखते हैं, तुसी खाना पाओ, उन्हां नूं भी पानी दो, उन्हां नूं भी उन्नी हाइड्रेशन की जरूरत हुंदी है, उन्नी ही छां दी, उन्हां दी हवा की जरूरत हुंदी जिन्नी सानूं हुंदी, क्योंकि उन्हां दे कोल भी शरीर ते रूह उन्हां दी भी है।
1: ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।

वेलकम बैक, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आरजे जोरावर सिंह इज हियर 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है जिथे गल दिल दी दिल तक हुंदी है जी। ते मैं कहा जी तुहाडा फेवरेट शो लैके असीं हाजिर हां। वैसे तां फेवरेट तुहाडे सारे ही ने, पर जिथे असीं आ जाईए ओह वी फेवरेट बन जांदा। क्या बात है, अपने मूंह मियां मिठू कदी कदी हो जाणा चाहीदा। वैसे ना जिंदगी दे विच हमेशा तुहानूं ना जिंदाबाद तरीके दे इरादियां नाल जींदे रहना चाहिए। वैसे एवं नहीं बजुर्ग कहते हैं जीते रहो बेटा, वो जीते रहो इस करके कहते हैं ता कि तुसी जिंदगी नू खूब रजमा जा जियो, है ना, तो मज़ा ही आ जाए। पल पल जिंदगी नू जियो, क्योंकि मन दे विच सियाने कहते हैं एक सैकंड दे विच इन्ने विचार चलते केवल समझ ही नहीं आती। विचार आपस दे विच गुत्थम गुत्था होए होंगे तो समझ ही नहीं आती भरा सोचना की ही। तो इस करके जिंदगी दे विच दोस्त बनाने बड़े जरूरी है, क्योंकि वो तुहानू क्लीयर कट चीज़ा दस देंगे भावें कि उन्होंने आप की जिंदगी समझ ना आती हो, पर तुहानू सीधे राह पा देंगे, है ना। इसे तरीके नाल तुसीं उन्होंने सीधे राह पा दें। रब ने खेड़ ही बड़ी सोहनी जी बनाई, खूबसूरत बनाई हुई है। तो लो जी तुहाडा फेवरेट शो जिहदा नाम है लव यू जिंदगी। हाय हाय हाय, नाम दे विच कितना प्यार है ना, लव यू जिंदगी। तो लव यू जिंदगी दे विच असी तुहानू इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनावांगे। तो मैं क्या जी स्टोरी तो पहला गाना बजाना हो जाए कि नहीं, क्योंकि गाने साडी जिंदगी दे विच बड़े ही जरूरी ने। जिहड़े लोग गाने नहीं ना सुनते या तो रब नहीं पहुँचे होंगे या फिर बेचारे कितने भी नहीं पहुँचे होंगे। तो इस करके कितना कितने पहुँचण वास्ते सानू संगीत दा, म्यूजिक दा, या जे तुसी कुछ लिरिक्स भी नहीं सुनते तो इंस्ट्रूमेंटल जरूर सुन लेना चाहिए। इसे करके ऑल इंडिया रेडियो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते साडा फर्ज है, साडी सेवा लगी है कि तुहानू असी टाइम टू टाइम सोहणे सोहणे गीत ते सोहणियां सोहणियां गल्लां बातां सुणाउंदे रहना है। ते असी तुहाडे दोस्त हाँ जी, मित्र हाँ, ते तुसी साडे नाल गल्लां बातां भी शेयर करदे हो ते खूब असी मजे करदे हां, क्योंकि इत्थे गल हुंदी है दिल तों दिल तक। ते लो जी लव यू जिंदगी दे विच असी तुहानू पहला गाना सुनावांगे जी। गुरनाम भुल्लर साहब दा रख ली प्यार नाल। ते वाकई सारे नू प्यार नाल ही रखना चाहिए यार, की फायदा गुस्से गिले करके, ते की फायदा एक दूसरे दे हुक्म चला के, है ना। भी जिहड़ा जो जिदा करदा उहदी मौज है, इदां कहना चाहिए भी भाई मौज है जी तुहाडी, सत बचन जी मौज है। सत बचन च बड़ा सुकून है जी। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਇਜ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਖ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ।

एंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, जेड़ा जिंदाबाद सी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सो वेख लो, ये मैं सनी देओल साहब दे डायलॉग बोलन रहा। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, और वाकई में रहेगा। और लो जी, जिते तुम तो गाने वाने सुन रहे हो, तो नाल दे नाल तुहानू एक इंस्पीरेशनल, चलो जी तुहानू स्टोरी सुना दिए, क्योंकि जेडे सारे साडे साथी थोड़ा जिहा हौसला हार जांदे आ ना, तो असी फिर उन्होंने थोड़ा जिहा मोटीवेट भी कर देईदा। तो मोटीवेशनल एक स्टोरी है, बड़ी खूबसूरत, तो अपने कन्न खोल के जरूर सुनियो। यह स्टोरी है जी फौजा सिंह जी की। फौजा सिंह, जो मैं नाम लिया होना, कई अंदर दिमाग के अंदर इमेजिज़ बननिया शुरू हो गई होनी कि हाँ हाँ असं जानते हैं फौजा सिंह जी कौन ने। जेडे नहीं जानते वो जरूर सुन। फौजा सिंह जी की प्रेरणात्मक कहानी इदा है जी कि फौजा सिंह जी का जन्म पंजाब के एक छोटे जे पिंड होया। बचपन में वह बहुत कमज़ोर सन। लोग कहते सन कि यह बच्चा ना तुर सकेगा तो ना ही कोई वड्डा काम करेगा। पर जिंदगी ने उन्होंने एक वक्री मंजिल लई चुनिया होया सी। जवानी विच वह खेतीबाड़ी करते सन अते सादी जिंदगी जीउंदे सन। बाद विच वह किसी तरीके नाल इंग्लैंड चले गए, पर उन्हां दी जिंदगी विच एक वड्डा दुख आया जदों उन्हां दे पुत्तर दी मौत हो गई। इस दुख ने उन्हां नूं अंदरों तोड़ दिता, पर वह हारे नहीं। वह 99 साल की उम्र विच उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिता, रनिंग करनी शुरू कर दिती, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनिया शुरू कर दित्तियां। जिथे लोग इस उम्र विच आराम करते ने, उत्थे फौजा सिंह ने अपनी नवी जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने कई मैराथॉन दौड़ा में हिस्सा लिया, और सुनन च आया ईवन दैन मैं भी सोशल मीडिया तो उन्होंने बड़ा देखता रहा, कई बार तो लाइव भी होए होंगे सन, जो तो देखीदा सी ना, एक बन्ने सारे लोग भज रहे होंगे सी, तो एक बन्ने जिहड़े साडे फौजा सिंह जी जदों रनिंग करते सी ते वक्खरे दिखते सी, क्योंकि इन्हां दी उम्र और इन्हां दा जज्बा और इन्हां दीआं अखां दे विच एक पॉजिटिविटी दी एक पॉजिटिव एनर्जी जिहड़ी दिखदी सी सारिआं नूं, ओह सारिआं तों इन्हां नूं विलक्खण कर दिंदी सी। जिथे लोग इस उम्र विच आराम करदे ने, उत्थे फौजा सिंह जी ने अपनी नवीं जिंदगी दी शुरुआत करदे होए कई मैराथोनां विच उन्हां ने हिस्सा लिया, ते दुनिया भर विच मशहूर हो गए, और इन्ने मशहूर होए कि लोगों ने भर भर के उन्हां नूं प्यार दित्ता, ते ओह खुद भी बड़े हैरान होए। लोगों ने उन्हां नूं टर्बनेट टोरनैडो के नाम नाल जाणिया, और उन्होंने नाम दिता कि यह टर्बनेट टोरनैडो ने कि बवंडर की तरह आते हैं तो सारियां पिछे छड़ जाते हैं। तो उन्हां दी कामयाबी का राज, उन्होंने हौसला कदे नहीं छड़िया, सादा खाना ते सेहतमंद जीवन, रब ते उन्होंने हमेशा भरोसा रखिया। देखो जी, सब तो वड्डी जिहड़ी फील है ना, जिहड़ा सब तो वड्डा एहसास है, वह एहसास भरोसा है। भरोसा चाहे तुसीं माँ बाप ते कर लो, चाहे तुसीं रब ते कर लो, अदृष्ट शक्तियां ते कर लो, यह भरोसा ही आ जिहड़ा व्यक्ति नूं इन्ना सोहना जीवन जीण ते मजबूर कर दिंदा कि हाँ यार हुण मैनूं भरोसा आ गया, ते हुण मैं जिंदगी जिंदाबाद कर देनी आ, ते हुण मैं कह देना कि लव यू जिंदगी, है ना, भी जिंदगी तैनूं लव यू है। तो सियाणे कहिंदे ने तीन तरीके दा साडा शरीर कम करदा, रूह अलग तो सोचदी है, मन अलग तो सोचदा है, ते शरीर अलग तो सोचदा। शरीर, रूह ते मन, ये जदों तिन्ने इकट्ठे हुंदे ना ते कमाल ही हो जांदी आ। सो इस करके होवो एकत्र, मिलो मेरे भाई, दुबधा दूर करो, लिव लाइफ, हर हालात में सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रखनी बहुत जरूरी है। तो मैनू अज भी याद है, मैनू एक बीबी जी ने कहा सी कि जोरावर सिंह, सांझ करी जाए गुणा करी छोड़ अवगुण चलीए, हमेशा पॉजिटिव रहो। जिंदगी दे विच उतार चढ़ाव आउंदे ही रहिंदे ने, ते हमेशा सानू पॉजिटिव रहना चाहिए, जिवें कि साडे फौजा सिंह जी रहे। और ईवन दैन मैं परसनली इन्हां नूं जलंधर दे विच आए सन, गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम विच असीं इन्हां नूं मिले, ते क्या बात है, मैनूं लग ही नहीं सी रहा कि मैं एक 90 साल दे व्यक्ति नाल मिल रहा, 89 ईयरस दे व्यक्ति नूं मिल रहा। मैनूं इदां लग रहा है जिवें ना बड़ा ही कोई नौजवान पहलवान होवे ना, उहदे नाल गल्लां बातां सी कर रहे, क्या जिंदाबाद उहनां दीआं गल्लां बातां सीगियां, और उहनां ने साडे अंदर भी जोश भर दिता कि तुसीं भरा सवेरे उठिया करो तड़के तड़के, है ना, तो तड़के उठ के सैर करया करो, जिहड़ा शरीर नूं तुसीं तंदुरुस्त रखो, उठक बैठक करो, कितें डंड डुंड पेलो। तो साडे हज़ारां साल पुराने जिहड़े एक मच्छी डंड हुंदे ने, एक सपाटे हुंदे ने, नॉर्मल डंड हुंदे ने, ते घट्टो घट 10 प्लस तरह के डंड हुंदे ने, योग विद्या दे विच भी सिखाए जांदे ने। तो सानूं इन्हां दी कहानी तो सिख्या की मिलती है कि फौजा सिंह जी सानूं सिखाउंदे ने कि उमर सिर्फ एक गिणती है, जे दिल विच जज्बा होवे तां हर मंजिल हासिल की जा सकती है। पर अज की डेट च जिथे ने जिथे कई एज ना 30 साल हो जाती, तो वह पहले ही हाई हाई करने शुरू हो जाते कि हाई मेरा लक, हाई मेरी लत्त, हाई मेरे पैर। इस जिंदगी दे विच आउंदा ही रहेगा दुख, पर हमेशा इन इग्नोर मार के आपां अगे चलना, तो जिहड़ी रूह

क्या बात है यार दिलजीत, दसान साहब, गुरदास मैन साहब, बड़ा ही मज़ा आया। मैनू मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन्हों लाइव देखा होया, बड़ा ही मज़ा आता है। एक्चुअल जो लाइव जो होर भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो लो जी दोस्तों, लव यू जिंदगी, असी एक दूसरे नाल वादे किए आते, असी पॉजिटिव होकर जा रहे हैं। तो मेरा तो दिल कंडा तुहानू ना, मैं सौ ही पा देंगे यार, तुसीं पॉजिटिव होया करो, की नैगेटिव हो जाने जे। चलो कोई गल नहीं, फिर अपने दोस्त नूं दिओ इजाजत। तो हुण भी मैं जाके थोड़ी सैर सूर करा, कसरत करा, तो उस तो बाद मैं क्लास लैनी न्याणियां दी। तो दिओ जी फिर आरजे जोरावर सिंह नूं इजाजत, क्योंकि साढ़े दरम्यान साढ़े सीनियर साढ़े जिहड़े कलाकार आरजे पहुँच चुके ने, आरजे हरीत सर। तो लो जी स्टे ट्यून, मिलते हैं इस तरीके ना, जिंदगी जिंदाबाद। सारे रल के कहने लव यू जिंदगी, बाय।

107 FM रेनबो ते एक बार फिर तो हाजिर है हरीश और साडा अगला पड़ा हो चुका स्टार्ट। और साडा प्रोग्राम जिस विच तुहानू बहुत कुछ सुनन मिलेगा। जिथे लहलहाउंदे ने पंजाब साडा रंगला पंजाब और रंगले पंजाब दी ए मनमोहक मैक और साडे दिल तक पहुँचदी उस दी हर एक आवाज़ हर एक गूंज जड़ी है सानू ए कहिंदी है कि ए साडा पंजाब है। और साडे पंजाब दे विच की नहीं है, साडे पंजाब दे विच ओ सब कुछ है जो एक जिंद जान नू अरशां तक पहुँचा सकता है। और इस रंगले पंजाब दे विच कुछ ऐसियां थावां ने, कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे जेकर असी कहीए कि पदार्थ ने या ऐसियां थावां ने जिथे शायद असी ना पहुँचे होइए या सानू उन्हां थावां बारे उन्हां प्लेसिस बारे ना पता होवे, उन्हां दे ना ही ना पता होण, हैगे ने महाराज हैगे ने। और पंजाब दे विच रहिंदियां ही सानू पंजाबियां नू ही पंजाबीयत बारे या पंजाब दियां उन्हां नामी थावां बारे शायद नहीं पता। और साडा प्रोग्राम रंगला पंजाब कुछ इदां दियां ही गल्लां बातां इस प्रोग्राम दे विच हुंदियां ने, उन्हां चीज़ां ते झात पाई जांदी है जो साडे कोलों खुसदियां जा रहियां ने उन्हां चीज़ां। और जेकर भावें गल होवे लोक साज़ां दी, भावें गल होवे इतिहासक पछोकड़ दी, भावें गल होवे साडे विरासती कल्चर दी, भावें गल होवे साडे नाल जुड़ियां बहुत सारियां ऐसियां यादां दी पंजाब दी पंजाबीयत दी जो असी विसार चुके हैं। रंगला पंजाब वो सब कुछ चेते कराउंदा है तुहानू और 107 FM रेनबो ते हरीश नाल है तुहाडे वो सब कुछ चेते कराउण दे लई। और एक टूअर कराउण दे लई रंगले पंजाब दा अज वो टूअर होएगा एक ऐसी थां दा, एक ऐसी जगह जिथे असी सारे जाना चाहुंदे आ और सानू जाना भी चाहिए है। और उस प्लेस दा नाम है जी, किहड़ी प्लेस दसो, है कोई अंदाज़ा कि मैं पंजाब दे किस शहर दी गल करन लगा? वो शहर जिथे बहुत मशहूर है वह किला, वो शहर वो किला उसकी शान है, वो शहर जिहड़ा बड़ा ही पुराना है और बड़ा इतिहासक उसका निशान है। पता लगा कुछ महाराज? मैं उस प्राचीन शहर की गल करन लगा जिहदी खासियत कमाल है, भावें वह एक वड्डा ज़िला है शहर है और उहदे नाल नाल उह एक जंक्शन भी है। मालवा चलो तुहाडे लई ईजी कर दिंदा, मालवे की गल कर रहा मैं, मालवे खेतर दे विच ओ उगा ज़िला पैंदा जिहदी मैं अज गल करन वाला। महाराज चंडीगढ़ तो 227 किलोमीटर दूर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ, ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 98 55 10 10 23, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਟਸਅਪ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਟਸਅਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਅਪ ਭੇਜਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਬਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 2342 174, ਇਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਟਸਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 98 55 10 10 27, ਮੈਂ ਕਿਸ

107.7 FM रेनबो ते हरीश दी आवाज थोड़े तक पहुंच रही है और प्रोग्राम तुसे इंजॉय कर रहे हो मेरे नाल रंगला पंजाब। और रंगला पंजाब प्रोग्राम च मैं तुहानू इस गाने तो पहला छड़ के गया सी इस गल दे नाल कि एक टूर कराना तुहानू शहर दी असी गल करनी है ओ पंजाब दा इतिहासक पिछोकड़ वाला ओ नामी प्राचीन शहर पंजाब दा मालवे खेतर दे विच पैंदा है और उत्तर पछम दे विच मतलब चंडीगढ़ तो ओह 227 किलोमीटर दूर है और पंजाब दा सब तो वड्डे शहरां दे विचों पंजवें नंबर ते आउंदा है और सफाई दे मामले दे विच वी ओह बड़ा कमाल दा शहर है। मतलब कह लो कि पंजाब दे विच दूसरे नंबर ते है सफाई दे मामले दे विच वी। गैस एनी गैस व्हाट्सएप भी तुसी कर सकते हो।

101.7 FM रेनबो ते हरीश तुहाडे तक है जी, तुहाडे कोल है और प्रोग्राम चल रहा है रंगला पंजाब। असी गल कर रहे हैं बठिंडे शहर की, गल की और असी खास लोगों की भी गल करिए, कलाकारों की गल करिए जो इस शहर तो बिलोंग करते हैं। कुलदीप माणक साहब की गल करिए, कलिया के बादशाह किंग ऑफ कलिया जलाल पिंड तो जो कि डिस्ट्रिक्ट बठिंडा दे विच ही पैंदा, उन्हां दा बर्थ इत्थे होया सी। जसविंदर बराड़ की गल करिए, फेमस पावरफुल सिंगर प्लेबैक सिंगर वह भी इतों ही बिलोंग करते हैं। महरीन पीरजादा जो एस्टैबलिश बॉलीवुड एक्ट्रेस वह भी इस शहर तो ने, और जाजिम शर्मा टैलेंटेड प्लेबैक सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर बठिंडे शहर तो बिलोंग करते हैं। और फेमस नॉवलिस्ट पद्मश्री अवार्डी जनाब गुरदयाल सिंह जी वह भी इस शहर के नाल ताल्लुक रखते हैं। बड़िया बड़िया फेमस परसनैलिटीज़ जड़िया ने वो इस शहर तो ने, और इस करके ये शहर कुछ खास है महाराज, और इस करके ये गुड़ तो भी मिठा है।

परी नमस्कार, विनोद काटपाल, प्रवीण काटपाल, हनी काटपाल, दीक्षा काटपाल, जन्नत काटपाल, गुरलीन काटपाल, फिल्म कहिंदे ने सेती मुराद दा दुद्ध रिड़कां वे दुद्ध रिड़कां, ये गाना प्ले हो गया जी। तुहाडी फरमाइश लो, मैसेज पढ़ने तो पहले तुहाडी फरमाइश पूरी हो गई है। इदां हो सकदा है? क्या बात है, गलबात है तुहाडी महाराज। नमस्कार जी, अगला मैसेज पढ़ते हैं जी। नमस्कार फिल्म दोस्ताना गीत दिल लगी नदी हवा, थोड़ा सा नशा हुआ। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, ये मैसेज मेरे तक पहुंचाया जी। इन्हें फरमाइश ज़रूर पूरी करते हैं। आज फिर सुनते हैं किशोर जी और लता जी की आवाज़ से दोस्ताना फिल्म का ट्रैक।

गोपी, किरण खुराना, लाव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, एस के, पप्पी खुराना, धन्यवाद, ये मैसेज मेरे तक पहुँचे हैं जी। फटाफट इस हो नहीं सकता उदित नारायण की आवाज़ ट्रैक प्ले करते हैं, इस प्रोग्राम इतने करते हैं ख़त्म और वधते हैं अगे।

आगाज हो चुका है शाम एक गजल था, गजल जिस दी अपनी खूबसूरती जिन्नी होंदी है उस तो भी ज़्यादा खूबसूरत वो बयां करती है, वो एहसास, वो जज्बात, वो गल्लां जो असी अपने प्यारे तक पहुँचावना चाहते हैं, और इस खूबसूरती दे नाल वो पहुँचाती है कि उस दी खूबसूरती दे विच चार चन्न लग जाते हैं। यही है इस सफ़र का लुत्फ, और इस सफ़र से तुहानू मेरे नाल इदां दे खूबसूरत गज़लां तां सुनन नूं मिलणगियां ही, नाल नाल खूबसूरत एहसास भी होणगे जो तुहानू अपने एहसास नाल मुलाकात कराउंदे होए नज़र आउणगे। तुहानू एहसास होएगा उस याद का, उस सफ़र का जो तुसीं कदे तय कीता पर अधूरा रह गया, वो सफर आओ मिल के पूरा करते हैं।

तुम कोई कोई लफ्ज नहीं हो जो बस कह दूं और बात खत्म हो जाए। तुम तो वो खामोशी हो जो हर बार दिल में उतर कर मुझे पूरा कर जाती है। तेरे होने से ही मेरे दिन की वजह मिलती है, वरना ये दुनिया तो बस यूं ही गुजर जाती है। तेरी हंसी जैसे मेरी हर थकान का इलाज हो, तेरी आंखें जैसे मेरे हर सवाल का जवाब हो। और सच कहूं, मोहब्बत मैंने तुमसे नहीं की, ना, मोहब्बत ने मुझे तुम तक ला दिया। यही है मेरी मोहब्बत।

मैं तुमसे एक दिन कम जीना चाहता हूं। ये मौत की बात नहीं है, उस मोहब्बत की बात है जहां हर सुबह तुम्हारे नाम से शुरू होती है। मैं चाहता हूं कि जब बाल सफेद हो जाएं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाएं, तब भी तुम मुझे वैसे ही देखो जैसे पहली बार देखा था, जब हम पहली बार मिले थे। हम लड़े भी, रूठे भी, पर दिन के आखिर में एक दूसरे के हाथ को थाम कर मुस्कुरा दें। मैं दुआ करता हूं कि हमारी मोहब्बत इतनी लंबी चले कि बच्चों को हंसी आ जाए, और बच्चों की हंसी में, घर की रौनक में और बुढ़ापे की चाय में भी तुम्हारा साथ मेरे साथ बना रहे। क्योंकि आखिर में मोहब्बत वही होती है जहां इंसान सिर्फ प्यार नहीं, अपनी पूरी जिंदगी किसी एक के नाम कर जाता है। और तुम्हारे साथ मुझे वही मोहब्बत है।

कुछ लोग जिंदगी में किस्मत से मिलते हैं और फिर धीरे धीरे वो जिंदगी बन जाते हैं। मेरा वो दोस्त जो मेरी हर खुशी का कारण है, जो मेरे बिना कहे सब समझ जाता है, जिसके साथ में मैं खुद को सबसे ज्यादा जुड़ा महसूस करता हूँ, असली और सुकून में महसूस करता हूँ, जो मेरे आंसुओं को भी हंसी में बदल देता है। हमारी बातें, हमारी यादें, हमारी नोकझोंक, हमारी मस्ती, सब कुछ इतना खास कि शब्दों में बयां नहीं हो सकता। वो दोस्त दोस्त नहीं, वो दिल का वो हिस्सा है जो हमेशा साथ रहता है हर हाल में। क्या ये जरूरी है कि उस दोस्त को प्यार का नाम दिया जाए? बताइएगा या दिमाग में दौड़ाइएगा, कोई है ऐसा खास दोस्त?

सुनो, मैं जब भी मांगूंगा तुमसे तुम्हारा वक्त मांगूंगा। कब, कहां, कैसे, इसका जिक्र मांगूंगा। वक्त बेवक्त कॉल करने का हक मांगूंगा। बिन बात के मेरे लड़ने पर तुम्हारा सब्र मांगूंगा। अलसाई सोई सी तुम्हारी तस्वीर मांगूंगा। मैं जब भी मांगूंगा तुम्हें, तुमसे थोड़ा और मांगूंगा। और तुम कभी भी मुझसे नजर मत चुराना, बिल्कुल नहीं, वो नहीं सह सकता मैं।

एक प्यार का नगमा है, प्यार का नगमा जो प्यार नाल तुहाडे तक पहुंचेगा और तुहानू उस प्यार दा एहसास जरूर करवाएगा। इस होर भी खूबसूरत हुंदी रात नू खूबसूरत बनाउण दे लई इह साडा रेट्रो सोंग्स दा प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, जिसका आगाज हो रहा जी इस ट्रैक के नाल।

तुम्हें जाने देना आसान तो नहीं था, पर तुम्हें जाते हुए देखना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। तुम यूं जा रहे थे जैसे जैसे शाम ढलती है, धीरे धीरे खामोशी में अपना उजाला साथ लिए हुए। मैं यूं ठहरा था जैसे जैसे कोई पेड़ पतझड़ में हर पत्ता गिरते देखे पर उसे रोक ना सके। कुछ रिश्ते भी अजीब होते हैं ना, रास्तों की तरह साथ चलते चलते एक मोड़ पर खो जाते हैं। है ना, खो गए हम दोनों।

कभी कभी एक इंसान जिंदगी में आता है और खामोशी से कुछ बदल जाता है। न रास्ते बदलते हैं न मंजिल बदलती है, बस दिल को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर वही दुनिया भी कुछ खूबसूरत सी लगने लगती है, क्योंकि कुछ लोग मोहब्बत बनकर नहीं आते, वो हौसला बनकर आते हैं और फिर उम्र भर हमारे साथ रह जाते हैं। हमारा हौसला बनकर, हमारा साथ बनकर, है ना।

प्रिय, अब तेरे नाम से भी दिल डर जाता है। जिसे सोचकर कभी सुकून मिला करता था, अब दिल डर जाता है। तो मिला भी ऐसे जैसे बारिश की दुआ, और बिछड़ा भी तो ऐसे जैसे मौसम बदल जाता है। मैंने हर दर्द को चुप रहकर सह लिया,

क्योंकि दिल की चीखों को कौन सुना करता है। अब न शिकायत है न किसी से गिला है, बस एक तेरा ख्याल है जो आज भी मुझे रात भर जगा रहा है। मुझे रात भर जगा रहा है, आपको भी।

जिंदगी में ना कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती, ना मुलाकातें, ना एहसास, ना ही किसी अपने से कहने को बची बातें। हम सब अपने भीतर कुछ अधूरा लिए जी रहे हैं और एक दिन सिर्फ ये खामोशी ही हमारे साथ जाएगी। ये खामोशी महफिलों में भी हम अकेले ही होते हैं, है ना।